पूछो के तुम क्या हमसे लोगे, पूछो पूछो क्या हमसे लोगे, दिल जो हमने तुमसे बिना पूछ ले लिया। पूछो

0: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं, तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
1: अहो, पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे? आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात।
2: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%,
1: मुदत 1 वर्ष। आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या, नियम व अटी लागू।

0: ये सागर आया
1: आया
0: ये सागर कैसे पार करे
1: करें
0: सुग्रीव तुम बताओ। बजरंगबली क्या विचार है? रघुवीर अब तुम बताओ क्या करें?
2: अरे पाथर फेंको

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना। खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर

आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो?
2: मेरे पास वक्त नहीं है दिल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ। ए हुस्न तेरी खातिर, ए हुस्न तेरी खातिर,

0: गीत संगीत गायनाचा हमराज कार्यक्रम सुरू होत आहे. गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार आणि गायिका लता मंगेशकर यांचं गाणं 1954 नागिन चित्रपटातून ऐकत आहोत. या गाण्यात बीन म्युझिक वाजवणारे संगीतकार रवी आता हे संगीत कीबोर्डवर सादर करीत आहेत. त्यांचा हा परफॉर्मन्स श्रीलंका या देशात झालेल्या गीत माधुरी म्युझिकल शोमध्ये 2010 आकारास आला. गाण्याचे शब्द आहेत, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे.
1: हिंदी प्रेमियों के बीच में आप बैठे हैं और आपके आपके संगीत से सजाए गए गानों पे श्रीलंकन गायक गायिकाएं गीत गा रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे गाने बनाए हुए गाने आज मैं खुद सुन रहा हूँ अपने सामने, और इतना अच्छा गा रहे हैं लोग, यहाँ के लोकल सिंगर. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ऑर्केस्ट्रा की लगी है. ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा बजा रहे हैं ये, बिल्कुल जैसा लगता है कि जैसे रिकॉर्ड बज रहा है, रिकॉर्ड में जैसे फिल्म में था वैसा ही इन्होंने कितना अच्छा बहुत अच्छा उसको अडॉप्ट किया है.

मान लो दफ्तर को जाना है, अज दफ्तर को जाना है। एक अर्ज मेरी मान लो दफ्तर को जाना है, मैंने दफ्तर जाना है। मंगल का दिन है आज, कोई इतना

0: मी दिलीप प्रभावळकर, रेडिओ विश्वास 90.8 FM, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: अभी एक साहब ने फरमाइश की है, पारा पारा हुआ पैरा होने जा, बहुत मुश्किल गजल है समझने में भी गाने में भी, तो वो उनकी फरमाइश एक शेर पेश कर रहा हूँ. हाँ. उसके बाद फिर मैं मेरे तक फरमाइश की है, फिर उसके बाद अनाउंस करूँगा.

0: किसकी जान लोगी, क्या इरादा है?
1: हमको तो बर्बाद किया है, और किसे बर्बाद करोगे? हमको तो बर्बाद किया है,

है तुझको अगर दुनिया का डर कुछ जा मेरी आंखों में, है तुझको अगर दुनिया का डर जा मेरी आंखों में।

0: अरब हमारा।
1: अरे भाई अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा?
0: पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, पौलाद से बना है हर नौजवान।